सुप्रभात अम्बाला, आप सभी का स्वागत है आज के प्रसारण में। आज है 1 अगस्त 2026 शनिवार, श्रवण कृष्ण पक्ष तृतीया 2083 विक्रम संवत। आज अम्बाला में सूर्योदय हुआ है 5:41 पर और सूर्यास्त होगा 7:17 पर।

महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रह्लाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंथरा चाल चलती रही।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11। कार्यक्रम को एडिट रिकॉर्ड किया भारत सोपुरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन और प्रस्तुत करेंगे आरजे किरण।

आप सभी को मेरी तरफ से यानी किरणी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। शुरू के इस सिलसिले सरगम में आपका स्वागत है। आज हम यादों की उन गलियों में घूमने निकले हैं जहां हर गाने एक कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हसीन सफर। शुरुआत करते हैं उस पुकार से जो दिल की गहराइयों से निकली है, फिल्म गुमराह का ये नगमा जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा, रवि जी ने संगीत दिया और महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज़ दी। गाने के बोल है, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारी।

मोहब्बत की राहों में सहारा ढूंढती एक आवाज। सुनिए फिल्म हमसफर से मजरू सुल्तानपुरी के लफ्ज, असलम शफी का संगीत और आशा भोंसले जी की आवाज में। दिल के सहारे कैसे प्यार करें।

वक्त बीतता है पर यादें वही रुक जाती है। साहिर साहब ने लिखा, जावेद ने धुन दी और लता मंगेशकर ने गाया। गाने के बोल है, जाने वाले आजा तेरी याद सताई।

अब पेश है फिल्म साजन का वो धुआंधार गीत जिसे समीर ने पिरोया, नदीम श्रावण ने संगीत दिया और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने गाया। और गाने के बोल है, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम।

0: लीजिए पेश है फिल्म कश्मीर की कली का ये झूमता नगमा, जिसे SH बिहारी ने लिखा, OP नायर की धुन और मोहम्मद रफी का मस्ताना अंदाज। गाने के बोल है, तारीफ करूं क्या उसकी।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा

अगले गाने के बोल है बीगा बीगा प्यार का समा। ये फिल्म सावन से है। इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा, श्याम जी घनश्याम जी ने संगीत दिया और मोहम्मद रफी ने गाया।

प्रकृति और प्रेम का एक अनोखा संगम सुनिए फिल्म आदमी और इंसान से। साहिर का कलाम, रवि का म्यूजिक और आवाज दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, और गाने के बोल है नीले पर्वतों की धारा।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। जारी है कार्यक्रम सरगम। अब जिक्र उनका जिन्हें दुनिया पंचम कहती है। फिल्म यादों की बारात से आरडी बर्मन का म्यूजिक, मजरू के बोल और आशा रफी की जुगलबंदी। गाने के बोल है चुरा लिया है तुमने।

जिंदगी का फलसफा और फिल्म आनंद, योगेश जी के अल्फाज, सलील चौधरी की धुन और मुकेश जी की वो दर्द भरी आवाज। गाने के बोल है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

इश्क में दीवानगी लाजमी है। फिल्म कटी पतंग के लिए आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन ने संगीत दिया और किशोर कुमार ने गाया। गाने के बोल है, प्यार दीवाना होता है।

नज़ाकत और पुरानी दिल्ली की गलियां, फिल्म पाकिज़ा, संगीत नौशाद साहब का, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, और आवाज़ दी है लता जी ने, गाने के बोल है इन्हीं लोगों ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है आशिकी का ये सुपरहिट गाना, समीर के बोल, नदीम श्रवण का म्यूजिक और कुमार सानू की आवाज़। गाने के बोल है बस एक सनम चाहिए।

0: प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में सुनिए एक ऐसा नज़्म जो दिल को छू जाए। फिल्म कभी कभी का गाना, साहिर के लफ्ज, खयाम की धुन और मुकेश की आवाज़। गाने के बोल है कभी कभी मेरे दिल में। सुरों का ये कारवां आज यही थमता है। उम्मीद है आपकी रेडियो दोस्त किडनी की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, संगीत सुनते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11, जिसमें आपने पुराने हिंदी फिल्मों के गीत सुने। कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुत
1: ये थी
0: FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: मलेडियो 7056413010 पर फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी और लेके आए हम आपके लिए आज के कृषि समाचार। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना।
0: मक्का की 15 जुलाई तक बिजाई करें, संकर व बायो फोर्टिफाइड किस्में अपनाएं, 4 से 5 बार करें मिट्टी की जुताई, 1 एकड़ में 8 किलोग्राम बीज डालें। मक्का की खेती के लिए रेतीली दोमट व दोमट मिट्टी और अच्छे जल निकासी वाले खेतों का चयन करें, 4 से 5 जुताई कर 2 बार सुहागा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खेत में ढेले ना रहे। मक्का की बिजाई केवल ऊंचे इलाकों में ही करें जहां पानी की निकासी हो सके। मक्का फसल की बिजाई मध्य जुलाई तक पूरी कर लें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि सामान्य मक्का की लंबी व मध्यम अवधि के सिफारिश शुदा एकल संकर किस्में और बायो फोर्टिफाइड मक्का की पूसा MH4, पूसा HQPS1 इम्प्रूव्ड, पूसा HQPS5 इम्प्रूव्ड, HQPS1, HQPS4 और HQPS5 संकर किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। टेम्बोट्रियम लेडियम 42 SC 115 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बिजाई से पहले कर ले बीज उपचार। 1 एकड़ खेत के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मक्का में फॉल आर्मीवर्म फ्रा सर्वाधिक हानिकारक कीट है। फ्रा की रोकथाम के लिए क्लोरोट्रोनरी पोल 19.8, थाइमेथो किस्म 19.8 अनुपात कीटनाशी द्वारा 6 मिलीमीटर प्रति किलोग्राम बीज के दर से शाम को बीज उपचार करें व सुबह बिजाई करें। इससे दीमक व तना छेदक की रोकथाम भी हो जाएगी। फसल की बीमारियों से बचाने के लिए थेरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को बिजाई से 4 से 5 घंटे पहले उपचारित करें। बिजाई का तरीका, पूर्व पश्चिम दिशा में मेड बनाकर मेड के दक्षिण दिशा में उपचारित बीज से 4 से 6 सेंटीमीटर गहरी बिजाई करें। बाद में आधा खुड की ऊंचाई तक पानी लगाने से जमाव ज्यादा व जल्दी होता है। बिजाई यदि न्यूमेटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुड विधि का उपयोग करके की जाए तो जमाव अधिक होता है व पानी को भी 30 से 35 अनुपात की बचत रहती है। खाद व उर्वरक। ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 60 क्विंटल प्रति एकड़ खेत की तैयारी से पहले डालें। सामान्य दिशाओं में 50 किलोग्राम GAP, 40 किलोग्राम MOP व 37 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग बिजाई के समय करें। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए 600 ग्राम एस्ट्रोजन 50 WP के 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1-2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। कीट नियंत्रण। फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे खतरनाक कीट होता है। इसका पता लगाने के लिए खेत में 5 फेरोमोन पिंजरा प्रति एकड़ के दर से बिजाई के बाद लगाएं। क्लोरोनेट्री प्रोनोल 18.5 SC 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ या सैन्योटोराम SC 100 मिलीलीटर का 200 लीटर पानी में गोल बनाकर छिड़काव करें।
1: घर पर पशुओं के लिए संतुलित दाना मिश्रण तैयार करें, बढ़ेगा दूध उत्पाद। मौसम के अनुसार आहार देने से स्वस्थ रहेंगे पशु। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध और मुनाफा लेने के लिए उन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार देना बेहद जरूरी है। आज उपलब्ध विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक संतुलित पशु आहार कंपाउंड फीड किसानों के लिए एक सुविधाजनक किंतु अपेक्षाकृत महंगा विकल्प है। डॉक्टर डॉक्टर सुजॉय खन्ना लुवास ने बताया कि पशुपालक आसानी से सस्ता और 100% शुद्ध संतुलित दाना मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इससे न केवल खर्च में भारी कमी आएगी बल्कि पशुओं की सेहत सुधरेगी और दूध में फैट और SNF की मात्रा भी शानदार तरीके से बढ़ेगी। सामग्री और सही अनुपात: अनाज 35 से 40 किलो, मक्का, जो गेहूं या बाजरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम के अनुसार अनाज बदल सकते हैं, जैसे गर्मियों में जौ की तासीर ठंडी होती है और सर्दियों में बाजरा गर्माहट देता है। खल 25 से 30 किलो, प्रोटीन की पूर्ति के लिए सरसों की खल, बिनौला, कपास या मूंगफली की खल लें। चोकर और चूनी 20 से 25 किलो, गेहूं का चोकर और चना, उड़द या मूंग की दाल की चूनी छिलका पाचन तंत्र के लिए बेहतरीन होते हैं और फाइबर की कमी पूरी करते हैं। साधारण नमक 1 किलो, यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और पशु की भूख बढ़ाता है। तैयार करने की सही विधि: अनाज को बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीसने के बजाय दलिया पिसवाएं। खिलाने की मात्रा और सावधानियां: एक स्वस्थ पशु को उसके शरीर के रखरखाव के लिए रोजाना 1.5 से 2 किलो दाना चाहिए। अमरूद का साइलेंट किलर है फल मक्खी, बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप है फायदेमंद। बारिश सीजन में फल के छिलके में अंडे देकर फसल खराब करती है मक्खी। अमरूद के बरसाती फल को फल मक्खी प्रभावित कर सकती है। कीटनाशक मुक्त उत्पादन के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है। हाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्वावा अमरूद भूना में किसानों को जागरूक करने के लिए फल मक्खी ट्रैपों में नए लीवर लगाए गए। प्रदेश में 17,448 हेक्टेयर में अमरूद की फसल है। पिछले साल 21,228 मेट्रिक टन उत्पाद हुआ था। प्रदेश में अमरूद की खेती हिसार, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी, जींद, करनाल, सोनीपत, पानीपत व यमुनानगर में की जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक फल मक्खी का प्रभाव रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि फल मक्खी अमरूद, आम, पपीता, नींबू की फसलों का प्रमुख कीट है। मादा मक्खी फल के छिलके में अंडे देती है। अंडों से निकले कीड़े फल के अंदर गूदा खा जाते हैं। इससे फल सड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं व बाजार में गुणवत्ता घट जाती है। इससे 30-80% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध हैं। लूअर की कीमत 35 से 100 रुपए प्रति पीस या ब्रांड के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भी यह किफायती दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं। 1 एकड़ में नियंत्रण के लिए 8 से 10 ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है। व्यवसायिक ट्रैप लूअर किट की कीमत इससे अधिक भी हो सकती है। किसानों को उत्पादन में मिलेगा बढ़ावा। फल मक्खी की समय रखते पहचान हो जाती है। कीट की संख्या बढ़ने से पहले नियंत्रण संभव होता है। फलों का नुकसान और गिरावट कम होती है। कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत घटती है। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। बेहतर गुणवत्ता वाले फल तैयार करने में मदद मिलती है।
0: ये थे आज के कृषि समाचार और उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपका लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप कृपया हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। हम उस जानकारी को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।
0: नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। विदस्ता रेडियो आपके जीवन का प्रवाह।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, लेके आई हूं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट की नई श्रृंखला। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज के रेडियो पॉडकास्ट का टॉपिक है तकनीक में आगे कौशल में पीछे। आज की युवा पीढ़ी तकनीक के इस्तेमाल में दक्ष है, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र भी है, लेकिन संज्ञानात्मक कौशल के विकास के मामले में ये पीढ़ी अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही है। जबकि सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने के लिए कौशल बेहद जरूरी है। आमतौर पर नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से अधिक समझदार और जागरूक मानी जा रही है, लेकिन अगर जनरेशन जेड 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों की बात करें तो ये पहले ऐसी पीढ़ी है जिसकी संज्ञानात्मक दक्षताएं पिछली पीढ़ी की तुलना में थोड़ी कमजोर है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जारेड कुनी होवार्थ ने अपने एक अध्ययन में ये बात कही है। उनके अनुसार तकनीक पर बढ़ती निर्भरता इसकी मुख्य वजह है, क्योंकि तकनीक जानकारी तो देती है लेकिन सोचने, सवाल पूछने और चीजों को गहराई से समझने की आदत कमजोर कर देती है। हालांकि यदि हम शोध के बिना इस पर विचार करें तब भी तकनीक पर निर्भरता और पढ़ने सीखने का तरीका कहीं ना कहीं इस पीढ़ी की मानसिक क्षमताओं और संज्ञात्मक दक्षताओं को दुर्बल कर रही है, इनमें पिछड़ रही है ये पीढ़ी। एकाग्रता, लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। याददाश्त, किसी जानकारी को लंबे समय याद रखना इनके लिए मुश्किल है। समस्या समाधान, जटिल समस्याओं पर गहराई से सोचने और सही निर्णय लेने की कठिनाई हो रही है। अध्ययन और तार्किकता, लंबे समय तक पढ़ने की क्षमता तथा बुनियादी गणितीय तर्क में गिरावट देखी जा रही है। धैर्य, तुरंत परिणाम पाने की प्रवृत्ति के कारण समय लेने वाले लक्ष्यों के लिए धैर्य में कमी है। संवाद कौशल, मौखिक संचार कौशल कमजोर होने के आमने सामने की बातचीत इन्हें कठिन लगती है। मानसिक दृढ़ता, अत्यधिक संरक्षण वाली परवरिश के कारण चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी कम है। इन कमजोरियों के कई कारण हैं। स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता, जनरेशन जेड मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल अधिक करती है। किताब पढ़ने की आदतों में कमी, पहले लोग किसी विषय को समझने के लिए किताबों और अखबार पढ़ते थे। संक्षिप्त जानकारी की आदत, आज की डिजिटल दुनिया में जानकारी तेजी से और छोटे रूप में मिलती है। मल्टीटास्किंग की आदत, ये पीढ़ी अक्सर एक साथ कई काम करती है। आदतों में बदलाव से होगा सुधार, आज की पीढ़ी को स्वयं आगे बढ़कर खुद पहल करनी होगी, अभिभावक इसमें उनकी सहायता कर सकते हैं। रोज 20 से 30 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालें, शुरुआत कहानी या पसंद की किताब से की जा सकती है। रोज 7-8 घंटे की नींद लें, सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करने से नींद बेहतर आती है। रोजाना टहलना, योग करना या हल्का व्यायाम करना शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। एक समय में एक ही काम करना सीखें, नई भाषा सीखना, पहेलियां हल करना, शतरंज खेलना या संगीत व्याग सीखना दिमाग को सक्रिय रखता है। तकनीक पर निर्भरता कम रखें, दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। युवा अपने बड़े बुजुर्गों से उनके कौशल सीखें और बड़े भी उनके लिए समय निकालें। ये था आज का हमारा रेडियो पॉडकास्ट, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक हमें दीजिए 7056413010 पर, 7056413010 पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

ए बादी सबा जाओ ना नदी के उस पार, पूछ के आओ ना उनसे उनका हाल, क्या करती हैं, कैसी रहती हैं, कैसी सोती हैं, कौन सी करवट लेते हैं वो, उनकी आंखें छू कर आओ ना, उनके माथे को चूम कर आओ ना, उनसे पूछ के आओ ना, वो चुपचाप क्यों रहती हैं, क्या मेरे बारे में कभी सोचते हैं। बादी सबा जाओ ना उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ ना, उनसे जाके कहो ना एक बार मिलने आओ ना। ऐ बादी सबा जाओ ना उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ ना, उनसे जाके कहो ना एक बार मिलने आओ ना। ऐ बादी सबा जाओ ना नदी

जहां पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या, उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्र तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या, उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या, उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी

तनहा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको, जो हो जाओ जिंदगी में तनहा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको।

मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों तक जागना अच्छा लगता है। मुझे है मालूम कि वो मेरी किस्मत में नहीं, मगर खुदा से उसे मांगता हूँ तो उसे मांगना अच्छा लगता है। उसे प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास में जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर ये ख्वाब देखता हूँ तो ये ख्वाब देखना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे हक है या नहीं, पर उसकी परवाह करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है।

हमारे आंगन में आग गिरे हैं, हर बूंद में तुम्हारी खुशबू की महकार है, और तभी मौतर हुआ है ये जहां। मेरे बरसों के तस्वुर में तुम अचानक यूं दस्तक दे गए, ये मैंने कभी सोचा न था, और ख्याल बनकर उतर जाओगे मेरे वजूद में, इसका तस्वुर मैंने

0: जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, थोड़े घर के काम में हाथ बटाना भी सीख ले, के करेगी इतना पढ़ के।
1: ITI में दाखिला लूंगी और फिर एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगी।
0: इतना आसान हो गया के?
1: माँ लगता है आपको पता नहीं कि महरी हरियाणा की ITI में दाखिले शुरू हो गए हैं, जहाँ पे 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा राज्य की 197 सरकारी और 180 प्राइवेट ITI के एक और दो साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इन ITIs में 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
2: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पना जिसे न आप बदल सकते हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंधी है। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। राजेश खन्ना नहीं रहे। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना इस दुनिया फानी से कूच कर गए और कह गए, क्या फर्क है 70 साल और 6 मिनट में, मौत तो एक पल है। समान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में मातम की लहर दौड़ गई। राजेश खन्ना ने आशीर्वाद में अंतिम

राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश का असली नाम जतिन खन्ना था और अपने अंकल के कहने पे जतिन राजेश खन्ना बन गए। एक टैलेंट हॉन्ट के दौरान राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 10,000 में से सिर्फ 8 लड़के ही चुने गए, उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना।

राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत सन 1966 में रिलीज के लिए तैयार हुई, लेकिन उनको जीपी सिप्पी ने राज फिल्म में ब्रेक दिया। इस अदाकार ने सन 1969 से 1975 तक फिल्म आराधना और फिल्म दो रास्ते से अपनी कामयाबी की शुरुआत की। इस दौरान 15 सुपरहिट फिल्में दी और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिला। फिल्म आराधना के अलावा सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद रोटी, खामोशी और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड

राजेश खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 14 बार नामांकन हुआ था और 3 बार ऐसे बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। राजेश खन्ना ने उस जमाने की लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, हेमा मालिनी, मुमताज, तनुजा, आशा पारेख, वहीद रहमान, लीना चंद्रावरकर और शर्मिला टैगोर। हेमा मालिनी के साथ राजेश खन्ना ने 15 फिल्मों में काम किया, जबकि एक्ट्रेस मुमताज के साथ 8 सुपरहिट फिल्मों में काम किया।

लड़कियों के बीच राजेश खन्ना की मकबूलियत इस कदर थी कि लड़कियां राजेश खन्ना के फोटो के साथ शादी करती थीं और खून से उन्हें खत लिखा करती थीं। राजेश खन्ना की कामयाबी में संगीतकार आर डी बर्मन और गुलकार किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर डी बर्मन ने 40 फिल्मों में संगीत दिया।

एक्ट्रेस मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ सुपरहिट जोड़ी के अलावा राजेश खन्ना का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। टीना मुनीम से प्यार की खबर के अलावा अंजू महेंद्र से उनके अफेयर की भी काफी चर्चा हुई। इन चर्चाओं पर खुद ही रोक लग गई जब अचानक सन 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली और ट्विंकल और रिंकी खन्ना के

गांधी के कहने पर राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कुछ चुनाव भी लड़े। लाल कृष्ण अडवाणी को चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी।

दोस्तों आपको याद होगा, राजेश खन्ना ने छोटे पर्दे पर भी 2001 में अपने पराये और इत्तेफाक जैसे सीरियल में नजर आई।

राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से भी जाना जाता रहा। सुपरस्टार के दौरान राजेश खन्ना के लिए एक खास कहावत का इस्तेमाल हुआ करता था, ऊपर आका

80 के दशक के अंत में राजेश की पहली पारी का अंत हुआ। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं।

सन 1994 में राजेश खन्ना ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। 1994 में खुदाई, 1999 में आ अब लौट चले। 2000

सन 1991 में 25 साल इंडस्ट्री में पूरा करने पर उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इन 25 सालों में राजेश खन्ना इंडस्ट्री में वाहिद एक हीरो बने रहे जिन्हें बतौर लीड रोल 106 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1966 और 1975 के दौरान राजेश खन्ना की 35 फिल्मों ने गोल्डन जुबली का खिताब हासिल किया और सन 1966-91 के दौरान 22 फिल्मों ने सिल्वर जुबली खिताब हासिल किया।

फिल्म गीत गाया पत्थरों के ऑडिशन के दौरान जितेंद्र को राजेश खन्ना ने ही कुछ फिल्मी टिप्स दिए थे। इस तरह वी शांताराम ने जितेंद्र को पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों के लिए साइन किया। राजेश खन्ना ने एक ही फिल्म में डिंपल कपाड़िया के साथ काम किया। फिल्म थी जय शुभ।

फिल्म आपकी कसम के दौरान सन 1974 में बीबीसी ने राजेश खन्ना पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका टाइटल था बॉम्बे सुपरस्टार। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने कहा था कि महिलाएं राजेश खन्ना की दीवानी थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में घंटों तक खड़ी रहती थी।

संगीतकार प्यारेलाल राजेश खन्ना के साथ काम करने को लकी मानते थे। सन 1969 में फिल्म दो रास्ते और सन 1986 में फिल्म अमृत के लिए संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आमतौर पे राजेश खन्ना की फिल्मों में अशोक कुमार, सुजीत कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, असरानी बिंदु, विजय अरोड़ा, रुपेश कुमार, दीना पाठक और एके हंगल जैसे मंजे कलाकार नजर आते थे। दोस्तों में शामिल रहे हैं राज बब्बर, जे ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा, डी रामा नायडू और जितेंद्र। दोस्तों, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं।
1: अमीन साहब, आदाब।
2: आदाब भैया, आदाब।
1: आज का प्रोग्राम समर्पित है राजेश खन्ना के नाम। राजेश खन्ना साहब के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी।
2: पहले तो मैं इतना बता दूं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं चाहता था बहुत कि वहाँ स्मशान घाट पहुंचूं, लेकिन इत्तेफाक से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मेरा बेटा गया मेरी तरफ से वहाँ, लेकिन अफसोस कि वो अंदर घुस ही नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं क्या अर्ज करूं। और मतलब ये इससे पता चलता है कि राजेश खन्ना की यादें और उनकी उनका प्रेम अब तक लोगों के दिल में बसा हुआ है। मैं उसके बाद उनके चौथे पर गया था, कंडोलेंस मीटिंग थी और वहाँ कई लोगों से मुलाकात की, सबके चेहरे उदास थे। और एक गजब की चीज भी मैंने सुनी वहाँ, राजेश खन्ना की अपनी आवाज में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कि किस तरह वो, ये पता नहीं किसका इंटरव्यू था, उसमें सिर्फ राजेश बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह वो स्टेज की दुनिया से आए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने तरक्की की
1: जी।
2: ये स्टेज पर काम करने वाली बात जो राजेश की थी, मेरा ख्याल है वो उनकी अदाकारी को संवारने निखारने में सबसे बड़ी बात थी। वो जब आए तो एक तैयार एक्टर थे, उनको एक्टिंग सीखनी नहीं पड़ी। हाँ, फिल्मों के लिए स्टेज और फिल्म में जो थोड़ा सा फर्क होता है वो एडजस्टमेंट उन्होंने पूरी तरह कर लिया और उसके बाद तो वो अपनी अदाओं से, अपनी खास हरकतों से, अपने खूबसूरत चेहरे से, अपनी मधुर आवाज से वो बस बढ़ते ही बढ़ते चले गए। मैंने उनकी कई फिल्मों में काम इसलिए किया ताकि मतलब इस तरह से कि मैं पब्लिसिस्ट उसका था रेडियो पर
1: जी,
2: और इस लिहाज से मेरी मुलाकात कई बार उनसे होती रही। एक इंटरव्यू सिर्फ मैंने उनका किया और वो कब, जब उनकी शादी होने वाली थी डिंपल कपाड़िया से
1: 1973 में,
2: खैर साल तो मैं भूल गया
1: जी, जी।
2: और शादी से करीब चार रोज पहले मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेकर उनके घर पहुंच गया और उनसे खूब बातें हुई और उन्होंने कहा मुझे कि जब मैंने पूछा कि शादी के बाद क्या डिंपल काम करेंगी फिल्मों में, तो कहने लगे नहीं, वो तो बस ये बॉबी आखिरी फिल्म है उनकी और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेंगी क्योंकि पत्नी को घर में रहना और पति के साथ रहना ज्यादा अच्छा रहता है। मगर और उसके बाद वो रहने भी लगी उनके साथ, दो बेटियां भी पैदा हुई, मगर न जाने क्यों उसके बाद क्या हुआ कि बात थोड़ी बिगड़ी
1: जी।
2: और वही बात हुई जो कि बॉबी के गीत में बॉबी की हीरोइन डिंपल ने कहा था अपने हीरो ऋषि कपूर से कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं महके चले चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो
1: जी।
2: और वो चली गई महके और दोनों अच्छे कलाकार अच्छे लोगों के बीच एक दीवार सी बन गई। इस दीवार की वजह से आखिर तक, यानी राजेश खन्ना के आखिरी दिनों तक ये दोनों अलग रहे और जब वो बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल में आना जाना शुरू हो गया, तो एक अच्छी पत्नी की तरह डिंपल फिर उनके पास चली गई और उनकी देखभाल भी की, उनके हॉस्पिटल ले जाने लाने में, वहां से लाने में उनका और उनके दामाद अक्षय का बहुत बड़ा हाथ था
1: जी।
2: और इस तरह से मामला चलता रहा कि आखिर सांस रुक गई और एक बहुत बड़ा कलाकार जो था वो खत्म हो गया।
1: अमीन साहब, जिन दिनों आप सिलोन में थे उस वक्त कोई ऐसी कोई याद उनके साथ जुड़ी हुई है?
2: याद तो फिल्म पब्लिसिटी के थ्रू रहा या फिर वैसे दोस्ती के जरिए और उनके दोस्तों से दोस्ती के जरिए, मसलन आर डी बर्मन बड़े दोस्त थे उनके, और
1: किशोर
2: आर डी
1: कुमार,
2: मेरे भी दोस्त थे भाई की तरह,
1: किशोर कुमार,
2: किशोर कुमार भी,
1: जी जी जी
2: तो इन सब से मिलना और उनके उनसे बात करना राजेश की, ये होता होता रहता था। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कि मेरे प्रोग्राम गीतमाला से ताल्लुक रखती है, और वो ये कि राजेश वैसे तो आते ही छाने लग गए थे और उनके गीतों ने भी धीरे धीरे काफी धूम मचानी शुरू कर दी थी, लेकिन आगे चलकर जब आराधना में उन्हें किशोर कुमार की आवाज मिली पहली बार, तब तक तो किशोर गाया करते थे सिर्फ अपने लिए या देवानंद के लिए, लेकिन आराधना में राजेश खन्ना के चेहरे पर जब किशोर कुमार की आवाज गूंजने लगी, उनके लब हिलने लगे किशोर की आवाज पर, तो ऐसा तहलका मचा कि बस करीब करीब सभी गीत टॉप हिट हो गए, और राजेश खन्ना न सिर्फ अपनी अदाकारी के जरिए बल्कि अपने खूबसूरत गीतों के जरिए भी लोगों के दिल में और गहरे उतरते चले गए।
1: कहा जाता है कि लड़कियां उनके फोटो से शादी करती थी, ऐसा?
2: बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी कि कुंवारी लड़कियों की तो वो फेवरेट थे ही, लेकिन बूढ़ी औरतों के यानी अम्मा नानियों का भी ये हाल था कि वो बड़ा प्यार करती थी, जब उनको अपना बेटा कहती थी, समझती थी, दुआएं करती थी उनके लिए, और छोटे बच्चे भी खूब मजा लेते थे उनकी अदाकारी का। तो वाकई वो पहले सुपरस्टार बने फिल्मी दुनिया के, यानी उनसे पहले तीन तो थे ही जो धूम मचा रहे थे, दिलीप और राज और देव, लेकिन उनके बाद जो सुपरस्टार कहलाए गए वो यही थे।
1: अमीन साहब, आखिरी दिनों में कभी आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला?
2: नहीं, मेरा तो ताल्लुक काफी वर्षों से बिल्कुल ही नहीं रहा था, बल्कि मेरा ही क्यों, किसी का भी ताल्लुक नहीं रहा था उनसे। मैंने देखा टीवी पर देखा कि एक बार वो किसी फंक्शन में आए थे और कुछ बोला था उन्होंने, और वो कविता जो उन्होंने दाग में बोली थी ना,
1: जी जी,
2: उसको एक नए अंदाज में जरा जोश के साथ पेश किया था, अमिताभ बच्चन कंपेयर कर रहे थे उस शो को।
1: जी जी,
2: लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया उनसे, बल्कि वो खुद अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान के लोगों से जरा दूर ही चले गए थे, एक हर्मिट से बन गए थे वो, और मुलाकातें लोगों की जरा कम ही होती थी, बीमार भी रहते थे। उनका उनका चेहरा आपने देखा ही होगा, दाढ़ी तो थी और गोया दाढ़ी छुपा रही थी उनके चेहरे का मुरझाना, तो बहुत बहुत बीमार, बहुत बूढ़े से लगने लगे थे वो।
1: ये भी उन दिनों कहावत थी कि ऊपर आका और नीचे काका।
2: ये मैंने नहीं सुना, लेकिन ये सही है कि सब उन्हें काका कहते थे। मैंने उन्हें काका नहीं कहा कभी, क्योंकि वो थे मुझसे जरा छोटे
1: जी
2: तो मैं राजेश जी का कहा करता था उनको।
1: अमीन साहब, किसी गाने के जरिए आप उनको याद करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के लिए?
2: जिंदगी का सफर है ये ऐसा सफर, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं, बहुत दिल को छू लेने वाला गाना था ये, और मेरा ख्याल है उन्हें उनकी याद में ये गाना जरूर बजाना चाहिए।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आपको मालूम है राजेश खन्ना के आखिरी अल्फाज क्या थे?
1: किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्हें दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा जमीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बारे में आपसे मुलाकात हुई। किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक रिश्तेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आपका ये प्यार था, आप वहां पर मौजूद हुए इतनी भारी संख्या में, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: जाती तौर पे राजेश खन्ना से मेरी मुलाकात पहलगाम कश्मीर में हुई थी फिल्म रोटी की शूटिंग के दौरान, और मुझे आज भी याद है। कश्मीर के दिल फरीब और हसी मनाजिर, खूबसूरती से वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। मेरी और उनकी बातचीत के दौरान वो अपने सिर को अपने ही अनोखे अंदाज में हिलाते रहे।
2: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन।
0: और वही उनका अंदाज हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता रहा।
2: गर्मियों से निखार है तो तुमको मुझसे प्यार है।

5 जुलाई 2012 दिन के 1:40 पे मौत ने दस्तक

मौत आई राजेश को अपने साथ ले गई। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता, पर यह भी अपनी जगह सही है, आनंद मरते नहीं। पसीना मौत का माथे पे उतरा है, आई न लाओ हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर

शम्मी ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मान

0: पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: You're enjoying 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: दालाज़ महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत। हम सुन रहे हैं 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

मैं चाहुंदा हां इदां ही तू हसदी रह, दूरों दूरों दिल मेरे विच वसदी रह, मिलके मैनू मुख तो तेरे हासा ना उड़ जे, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो विदस्ता असले पौन पटाके 90.0 मेगा।

0: dala झमेल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

देश है अपना देश है अपना देश है अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से उनके तख्त ताज से कट गया है अब।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। बाजरे की बिजाई के लिए जुलाई का पहला पखवाड़ा उत्तम, हर साल नया बीज ही लाएं। बरानी क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश के बाद शुरू करें बिजाई। बाजरे की बिजाई के लिए जुलाई माह सबसे उत्तम समय है। बरानी इलाकों में मानसून की पहली वर्षा होने पर ही बिजाई करें, हर साल नया बीज ही लाएं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि खेत को दो या तीन बार जोतकर फौरन सुहागा लगाकर अच्छी तरह तैयार करें ताकि घास फूस ना रहे। एक एकड़ के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज चाहिए। खेत में सही उगाव के लिए बिजाई खुड्डों में इस तरह करें कि बीज के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी ना पड़े। खुड्डों का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। अर्ध संचित क्षेत्रों के लिए HHB 299 और बारानी क्षेत्रों के लिए HHB 67 संशोधित को बुआई के लिए अनुमोदित किया गया है। यदि बीज पहले से उपचारित ना हो तो डाउनियोमेल

तो यह हरी बाली रोग की शुरुआती रोकथाम के लिए बीज को मेटलेक्सियल 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर देना चाहिए। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। बिजाई के समय 16 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ बरानी क्षेत्रों में तथा 24 किलोग्राम नाइट्रोजन व 25 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ संचित क्षेत्रों में अवश्य डालें। बाकी नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को 2 बराबर भागों 18-18 किलोग्राम में बांटकर पहली बार पौधों की छटाई के बाद और दूसरी बार सिट्टे बालियां निकालते समय दें। बाजरा के सिंचित क्षेत्रों में इतनी ही नाइट्रोजन व फास्फोरस के साथ निम्न नीची भूमि में 12 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ डालें। बीजोपचार और रोग नियंत्रण। बीज को 3 या 4 बार धोएं, तैरते पदार्थों को बाहर निकालें। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 50%, 400 ग्राम प्रति एकड़, 250 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के समय छिड़कें। यदि बिजाई के तुरंत बाद इट्राजीन का प्रयोग ना कर सकें, तो बिजाई से 10-15 दिनों के बीच में उतनी ही मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। बिजाई के 3 से 5 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई आवश्यक है, जो खरपतवार नियंत्रण तो करती ही है, साथ ही नमी संरक्षण के लिए भी बहुत उचित उपाय है। वातावरण में ज्यादा नमी होने पर जोगिया रोग डेन्यू मैथ्यू का संक्रमण हो सकता है, जिसमें पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रायोदार आवरण दिखाई देता है। संक्रमण की शुरुआत होते ही प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें अथवा अनुसंचित कवकन नाशी का छिड़काव करें। चेपा या अर्गट रोग। इसमें बचाव हेतु बीज को 10% नमक से 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक में डुबो लें और तैरते हुए पिंडों व अन्य पदार्थों को बाहर निकालकर जला दें। नीचे बैठे हुए बीज को साफ पानी में 3 से 4 बार धोकर सुखा लें और 4 ग्राम थाइरम प्रति किलोग्राम बीज के मिश्रण से बीजोपचार करके बिजाई करें। बारिश के मौसम में मधुमक्खी के बॉक्स में फंगस पनपने का खतरा, हवा का संचार रखें। बारिश के मौसम को देखते हुए जुलाई के महीने में मधुमक्खी पालन पूरी तरह से नमी से बचाव और समय पर बाहरी आहार देने पर टिका है। आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का पालन करके ही एक कुशल पालक अपनी कॉलोनियों को बारिश की इन चुनौतियों से सुरक्षित रख सकता है। मधुमक्खी पालन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बदलते मौसम के अनुसार कॉलोनियों को कैसे संभाला जाए। कमल सैनी जिला बागवानी उद्यान विकास अधिकारी करनाल ने बताया कि इस दौरान अधिक नमी और फूलों के अभाव में मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाना अनिवार्य है। बारिश के दौरान बक्सों की समय समय पर सफाई करना बहुत जरूरी है। आधुनिक तरीका यह है कि यदि कोई कॉलोनी कमजोर हो रही है तो उसे स्वस्थ कॉलोनी के साथ मिला दिया जाए, मर्जर, जिससे वह सुरक्षित रहे और किसान को अच्छा मुनाफा मिले। मधुमक्खियों को चीनी का आहार देना जरूरी। बारिश के मौसम में अत्यधिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी के कारण बक्सों में फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जो पूरी कॉलोनी को कमजोर कर सकता है। उचित उगाई और स्टैंड। आधुनिक तकनीक के अनुसार बक्सों को जमीन से कम 6 से 9 इंच ऊंचे स्टैंड पर रखें। यदि बक्से सीधे जमीन पर होंगे तो बरसात का पानी और जमीन की नमी अंदर प्रवेश कर सकती है, जिससे छत्ता खराब हो सकता है। हवा का संचार, वेंटिलेशन। नमी से बचने के लिए बक्सों के अंदर हवा का संचार अच्छा रखें। सुनिश्चित करें कि प्रवेश द्वार में कोई रुकावट ना हो और बक्से के अंदर उमस ना बने। छत्ते का भंडारण खत्म ना होने दें। बारिश के कारण बाहर प्रकृति में फूलों का रस नेक्टर मिलना बंद हो जाता है।
ऐसी स्थिति में मधुमक्खियां बाहर नहीं जा पाती और छत्ते के अंदर का भंडार खत्म होने पर ही उनके भूखे मरने का खतरा पैदा हो जाता है। नियमित अतिरिक्त मदद। मधुमक्खियों को जीवित रखने और कॉलोनी को सुरक्षित बचाने के लिए इस दौरान उन्हें चीनी का घोल, शुगर सिरप का भारी आहार देना बहुत जरूरी है। यह एक तरह से उनके लिए आपातकालीन भोजन है जो उन्हें इस कठिन समय में जिंदा रखता है। बैंगन की फसल को फल बेधक कीट से बचाने के लिए रोगग्रस्त पौधों को नष्ट करें। विशेषज्ञों की सलाह पर हर 15 दिन बाद छिड़काव करें। बरसात के मौसम में बैंगन की फसल पर फल बेधक फ्रूट एंड शूट बोरर कीट का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। करनाल के नीलोखेड़ी ब्लॉक के तखाना गांव में इसका प्रकोप देखने पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को नियमित निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने की सलाह दी है। हरियाणा में 10,720 हेक्टेयर क्षेत्र में बैंगन की खेती होती है। वह जुलाई से अक्टूबर के बीच यह कीट अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह पहले कोमल टहनियों में छेद कर उन्हें सुखा देता है, फिर फलों में घुसकर गूदा खाता है। इससे फल बाजार योग्य नहीं रहते। कृषि विज्ञान केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया, फूलों के आने से पहले प्रकोप दिखने पर 75 ग्राम पाइनोसैन 45 SSP को 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में मिलाकर छिड़काव करें। जरूरत होने पर 15 दिन के बाद छिड़काव करें। बीज उत्पादन वाली फसल में प्रोक्लेम 5 SG का भी उपयोग किया जा सकता है। संक्रमित टहनियों और फल तोड़कर नष्ट करें। रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए 1500 PPM नीम तेल का 4-5 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव भी लाभकारी है। विशेषज्ञों ने जल निकासी, ड्रिप सिंचाई और संतुलित पोषण अपनाने की भी सलाह दी है।

ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि संबंधित जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता पर उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुम बोजान रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूं। रेडियो वितस्ता चु पन्न माज जब पोछर दिन खतर वक्त वक्त तुंद खतर नई प्रोग्राम तो नव जानकारी हेथ हमेश बुस तुहद रेडियो दोस्त भरत सपोरी। आज चुस बुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मज नव डल हेथ आमुत। आज बोजन तुशर अफसान जन लिखमुत सानी हंद मायानाज लेखक श्री वीरेंद्र पटवारी साबन। अत अफसानस नाव पोज अपुज वलु बोजव ये अफसान पोज अपुज अख लकुट अफसान अमिक लेखन वल वीरेंद्र पटवारी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हमने सर पे

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: छोर मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी, किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: जी, अरे कौन जी बोला है जी?
1: मैंने जब पूछा
2: ला ला ला ला,
1: बोल तेरा नाम क्या
2: ला ला ला ला ला,
1: तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धमसे, आई थी वो धमसे, गई छम छम छम मन्नू।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।
0: देखो पे

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा।

0: dala çıkmayın. İlk hey Lata Mangeşkar. İlk hey Radio Mitasta. हम सफर जिंदगी का
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अब वाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया।
2: वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का।
1: बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
2: अब आगे क्या करने का सोचा है?
1: आगे का तो अभी फिलहाल
2: रे, अब उसे हरियाणा की किसी ITI में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को सवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 197 सरकारी व 180 प्राइवेट ITI में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
3: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5, पेश करेंगे RJ किरने। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है यादें। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल कल्याण ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
5: सभी सुनने वालों को मेरा यानी किरनी का नमस्कार। आपका स्वागत है एक शानदार संगीत यात्रा में। इस शो में हम लेकर आ रहे हैं आपके दिलों को छू लेने वाले रेट्रो हिट्स, जिनकी धुनें हमेशा ताजगी का एहसास कराती है। और आज का हमारा टॉपिक है यादें। यादें भी अजीब होती है, दिल को बहलाती है, कभी हंसा देती है, कभी रुला जाती है।

बिछड़ कर भी जो पास रह जाती है वो यादें ही तो है जो कभी नहीं जाती है। यादों का असर कुछ ऐसा है जैसे बरसात की पहली बूंद का नशा है।

इसके साथ ही आज के रेट्रो हिट्स प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है। अब बारी है अलविदा लेने की, लेकिन याद रखिए रेट्रो हिट्स का सफर कभी खत्म नहीं होता। हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे पुराने गानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था यादें। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का था। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

हमारा यह सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां। पनाह गांव में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना, तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता

0: सफर
1: छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया हर पल अपना साया भी पराया होने लगा। जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं पानियों में कभी चांद आकाश से उतरकर डुबकी लगाया करता था, पर अब सब कुछ अलग है, भिन्न है, जब अपने ही पराए हुए

दिल की बातें ही बातें ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर। और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम याद आओगे।

एक प्यारा सा गांव है, पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी।

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं, और आप सभी श्रोताओं का जो फीडबैक हमारे तक पहुंचता है वो हमें बहुत ऊर्जा देता है, और जो सुझाव खास करके आते हैं वो हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं और उन सुझावों को लागू भी करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा, और आज के लिए हम आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न करते हैं। पर जाने से पहले आपसे किसी खास विषय पर हम बात करते हैं, आपको सुनाते हैं कुछ पंक्तियां, और साथ में आपको दे देंगे कल के कार्यक्रमों का विवरण भी, और साथ में नोट कराएंगे हमारे स्टूडियो का नंबर जहां पर आप अपनी जानकारी हमें भेज सकते हैं। एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से अंबाला की जनता को मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो आप अपने बारे में जरूर हमें लिखें, उसी नंबर पर हम आपको आमंत्रण देंगे स्टूडियो में, ताकि आपकी बात को रिकॉर्ड कर लोगों तक पहुंचाया जा सके। हम सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज है, रेडियो विदस्ता है, जिसकी स्वीकृति मिली है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ओर से। हम बात करते हैं अंबाला की और चाहते हैं कि अंबाला को विश्व पटल पर रखा जाए। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:31। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, और आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। श्रोताओ, अगस्त का पहला दिन आज समाप्त हुआ। आज 1 अगस्त के दिन स्वास्थ्य जागरूकता और हौसले की मिसाल का दिन है। आज के दिन की शुरुआत के साथ हम 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवसरों पर नजर डालते हैं। पहला, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक। आज के विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत

कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव करता है और बचाव ही सबसे बड़ा साधन है। तीसरा, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस यानी नेशनल माउंटेनियरिंग डे। ये दिन उन जांबाज पर्वतारोहियों का के नाम है जो ऊंचे शिखर को छूकर इंसानी हौसलों और दृढ़ संकल्प की नई मिसाल कायम करता है। जीवन की किसी भी चुनौती की चढ़ाई में ये दिन हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आज के इस खास सफर को अब यहीं देते हैं विराम और सेहत का ख्याल रखिए, अपनों का साथ निभाइए और जीवन की हर ऊंचाई को छूने का हौसला बनाए रखें। चलते चलते आज के समापन इस विशेष शायरी के साथ, हर दिन आपके लिए मैं जो शायरी लाता हूं उसके शब्द यूं है, वितस्ता की मचलती इन हसी मौजों का नगमा हो, वितस्ता की मचलती इन हसी मौजों का नगमा हो, दिलों में प्यार हो और जिंदगी का खूबसूरत समंद्र हो, रेडियो वितस्ता के संग यूं ही सजती रहे महफिल आपकी, रेडियो वितस्ता के संग यूं ही सजती रहे महफिल आपकी, हर सुबह नई उम्मीद हो, हर शाम में सुकून का मंदिर हो, हर सुबह नई उम्मीद हो और हर शाम में सुकून का मंदिर हो। तो ये पंक्तियां आप सभी के नाम। चलते चलते आपको कल के कार्यक्रम का विवरण देता हूं। कल 2 अगस्त 2026 रविवार को जो कार्यक्रम आपके लिए हम लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत सुनेंगे, कल रविवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम होगा हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत आओ गांव चलें एपिसोड 13। कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम होगा और इसको पेश करेंगे नेहा धाकड़। 8:30 किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट का एपिसोड 29 परवरिश है मुकाबला नहीं। 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8 पेश करेंगे आरजे किरनी और 10:25 पर कार्यक्रम मां अनमोल एपिसोड 2 और संगीत की सभा जारी रहेगी। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7 बजे होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 9। 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा। कल की कड़ी है तुम हमारे ना हो सके। ये था विवरण 2 अगस्त के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे और अपनी जानकारी भी भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त भरत सोपोरी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। और कल तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।